0: Alice Stage.
1: For the broader perspective, NewsHour from the BBC.
2: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
3: Namaste, welcome to Parichay. Parichay ka mukhya lakshya hai ki hum aapki parichay apne un khas logon se karaye jo Fiji ya India se aakar New Zealand mein base hue hain aur bahut safalta aur kamyabi hasil kiye hue hain. Iske saath saath hum kuch dilchasp vishayon par bhi charcha karenge aur show ko lajawab geet sangeet se bhi sajayenge. Namaste, main hu Nirmala Nand, aapka hardik swagat karti hu apne show Parichay mein. संगीत प्रेमियों आ जाइए मेरे साथ सुरों का सफर में और संगीत की इस दुनिया में खो जाइए. आज के इस सुहाना सफर में आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक कलाकार से प्यारे प्यारे नगमे और इसमें आप दो गीत सुनेंगे, मेरी जिंदगी है तू और राता लंबियां. एंड दीज टू सॉन्ग्स आर डेडिकेटेड टू फूल राज एंड संग राज ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया.

जुबिन नौटियाल के गीतों के बाद चलो आप सुनते हैं लता और किशोर जी की आवाज में आज मदहोश हुआ जाए रे।

सुरों का सफर अभी शुरू ही हुआ था कि अब जाने का समय भी हो गया। चलो अगले सप्ताह फिर मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल कीजिए और खुश रहिए। अंत में ये गीत नेहा कक्कर और टोनी कक्कर की आवाज़ में छोड़े जा रही हूँ। गीत के बोल हैं, मिले हो तुम हमको बड़े नसीब से।